ओम शांति शांति शांति। मूव योर हैंड्स, मूव योर फिंगर्स टोज एंड वार्म योर आर्म्स एंड ट्राई टू एक्सट्रोवर्ट योरसेल्फ विद दिस मूवमेंट। Become aware of your external world. Put your hands on your face and warm your face muscles. Make a slight massage of your face muscles. And open your eyes. Hari Om. Our practice is ending. We wish you all the best and looking forward to meeting you again with another part of yoga in daily life practice. Hari Om from Om Vishwadeep Gurukul Swami Maheshwarananda Ashram Jadan, Rajasthan, India.

0: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times residing the Om.
1: 11-szer Om lesz.
0: There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 गांठा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली एक घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, एक घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव many our students from west who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends, and learning comprises also of the physical part which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata, and other Upanishads. So definitely, we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwa Guruji, Vishwa Guru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish, and I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by work and so on. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha.

0: Shyantu ma kaschi dukkha bhag bhave. Om shantihi shantihi shantihi.
1: Good. Thank you ne main hunyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. All these vidyarthi turn to the... Don't go close to the... Phir chela nahi dikhega, beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas, beta, yahi khade ho ke de. Ya, nazdik aa ja. Bas. Okay, we will see if when is... देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय. सत्य सनातन धर्म की जय. भारत माता की जय. ओम शांति शांति शांति. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिव उर्वारुकं येव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीर्मां मृत्युः.

बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हैं, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, दिख रहे हैं सभी के, नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख।

0: श्री अलखपुरीशा महादेव की
1: जय।
0: स्वयंभू बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व वंदनीय भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्री रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजम् ने

रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण सटकम

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य।

0: की जय।
1: जय
0: माधव कृष्ण भगवान की
1: जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान
0: की जय।
1: श्री गजानंद जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

0: इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं वेद सार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीपनारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। सम

बड़े श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री मांगिया जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।